0: 102.3 FM.
1: जिसका दाना दाना एक समान,
2: ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।
0: 102.3 FM
4: 102.3 தமிழ் பாட்டுக்கு நம்பர் 1.